राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन बजियां वादाहियां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहूं हर नाले हर नाल रहूं तू मन मेरे दुख सब सारणा अंगीकार यो करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहूं हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सालाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शां सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो जिस दियां एह बड़ियाइयां कहे नानक सुनो संत हो शब्द रहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द उत घर सपागै घर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत उत वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कहे नानक तै सुख होआ तिद कर अनहद वाजे ਹੁਣ ਦੱਸੋ।

कृत इकृतवा हो जुग जुग फिर बटा यह ज्ञानी बुझेता है सतयुग संतोख का धर्म अग्रतवा हो त्रित रुपजित का जोर अग्रतवा हो।

कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। चिंता ताके कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो भिनस है परो आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले शाड़ सगल जंजाल दहूरा। बल छुटके ओ बंधन परे कशु ना होते उपाए, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाए। बल होवा बंधन छुटे सब किश होते उपाए, नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए।

राग एक संग पंच बरंगन संख्या लापै अठो नंदन प्रथम राग पहरो वै करी पंच राग नहीं संग उच्चरही प्रथम पहर भी बिलावली पुनिया की गावै बंगली पुन असलेखी की पही बारी ये पहरों की पंचो नारी पंचम हरक दिशाक सुनावै बंगाल मद माधव गावै ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पहांत अष्टपुत्र पहरव के गावै गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आला पै संग रागनी पंचो था पै गूंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सिहति उचारी तनासरीये पंचो गाई मादरा कौशक संगलाही मारू मस्त्यंग में वारा परबल चंड कौशक ओ भारा खोखट ओ भौरा नद गाई अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावई तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संग लाई पंचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान ओ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी का छेली पटमंजरी टोडी कही अलाप का मोदी और गुजरी संग दीपक के था कालंका कुंतल ओ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौराव कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना समर श्री राघवै गावै पंचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गबरी गावै आसा बरी ते पाछ सिंधवी लापी श्री राग स्यों पंचो थापी सालू सारग सागरा और गुंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टो मेघ राघवै गावै पंचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुन गुनी उचै सुर सूहो पुन कीनी मेघ राग स्यों पंचो चीनी बैरा तर गज तर के दारा जबली तर नट्यो जल तारा पुन गावै शंकर ओ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग

कथा कीर्तन हरि अति घना सुख सहज विश्राम मन ते कदे ना विसरै अनाथ को नाथ नानक प्रभु शरणागति जाकै सब किसे हाथ मन ते कदे ना विसरै अनाथ को नाथ नानक प्रभु शरणागति जाकै सब किसे हाथ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु जी को ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभ हंगुर प्रसाद जप आस जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवी जे सोची लखवार चुपै चुप न होवी जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पहार सह सियाणपां लख होई ता इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवण आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी होवण जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है कना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बार हुक्म न कोई नानक।